0: दिव्य राज्य के मिनिमम दिवस
1: 26 जुलाई।
2: With the AKM megahertz, TVFM.

अंग्रेजी गाली देके पप्पू की साली जाके बोली फिर पान चबा के यू कैन डांस सारा संडे के संडे फिर पप्पू जाए डांस क्लास अंडे पे अंडे खाके पप्पू नाचे दिन का नाचे वो बीट बजा के नाचे वो बेस बढ़ा के नाचे वो दुनिया भुला के कोई ना रोक पाए।

0: best.
1: अस्सलाम वालेकुम नूदी एक मेगाहर्ट्ज़ दिवे एफएम मिगड़ी गठी उन कोल्लां ती बेम में आए हूं तेरे नवारं उफावेर वागुत कोल कंगे दमु मिगड़ी गाड़ में कुरिया गेंद टी टाइम रिक्वेस्ट शो आए की का बदल कोली अलगन शाह होता महमूद टी टाइम रिक्वेस्ट में शो की एहुन तेरिंग रिक्वेस्ट तक जहाल दिन मा अलग में कुरिया गेंद शो है कोमे दो के सावेर हाथर का डिफाइनर एम फस करी तेरी कुरिया गेंद मी शो का बैवेर मुगे फुर्सत मिहारु फिश के मिमनी हुड़वा ले फमिया दो के शो है मेसेज कुरमुंदानी पीएसएम एआ एप मेदरको डीएफएम 91 मी पेज तें अडो हालम बेनुवा लवेंग एकम वाण मलाव लीला फोन वाल देनी शो ग बैवेरी वेला वाहक दक्काला लवेंग अडो हालम गे इतुरा मी शो गे तेरे मेसेज के जरिए एमएस लवे का रिक्वेस्ट करवेन नुनम हमै के निलावा लवे गे नन जहाला फोन वाल देनस ए लवे जहाल देना हिम अब हम मेसेज कुरमुंदावी मिगड़ी का फिशमट का मे गेनस्ते लवा मी वगुत कोल हमी हास कोलनी हुस कोलनी हम हुन तेरीना मेसेज कोलुमा बरी रीत लवे कफो बदलो कोलना मियदुगे कुरियन हुरी एहुन तेरीना एहुन तेरिंग रिक्वेस्ट तक आएको

0: नो दी है के मेगाहर्ट्स दी वे ही एफएम मगरिब नमाद वक्त
1: अल्लाहु अकबर अल्लाह

एवरेंगे हित्यौगा फोरवा खंतकाय एवरें फाळु पुरा खंत हम कशवरु कलेगे फाणुगे बेरी रसखलांगे जेनुडिगेंबे।

0: दिव्य राज्य के मिनिमम दिवस 26 जुलाई।
1: हिमबिह रखा तेरुं
2: हिमबिह वैक्सीन दे डोस हम करुं
1: साबुन लगें अद्दों
2: कैसा किंबी अलार्नम अंगे आने फिर निवा करुं
1: हिमबिह के एवज अलामाते हुरे नमा मास्क एलुं
2: अति हिमबिह के अलामाते हुरे नमा एका हरिवुं
1: हिमबिह के अलामाते फिर निजनमा लस नुकरवा सिही फरवा हो दवा
3: मामा हालु कीने
4: अल्हम्दुलिल्लाह दारिफुलु मेंगे हालु कीनेत्ता
3: आरमे मे संगल मामा कोंका मेते ती कोल्लनी गेने मामा आरमे आता
5: मामा ती हावुरु को मुलेन कमने आरमे ती कन कोल्ला फानो
4: दारिफुलु में हाय दरंगडे तिगुता मामा गातंगेस मामा हालु बलाला मामा के कंतत्ता कोल्ले देती मामा वरंग उफावे
0: ಅಹರುಮೆಂಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಮಿಬಿಂಗ್ ಅಹರುಮೆನ್ನ ಎಬ ಮುಖಾತಬ್ ಕುರೆ

0: ए लफुस रूमी के कंफतु के जहुमाए को मुली कोटरी एम्बुरी के काला युसा सिंग एने कुरे बुनो कोटरी के हुरी हिग्गा मु मंजर तका लेवेंटा के मीरुस मुलिम फंडवे अंदिर बेगें दिया रूमी के दुनिये सिकुंत कोलकां हुट्टु नो हिंग हीवी कंफे बाबे डॉक्टर देन देखे एविस वाह के रूमी के सिकुंडिये करनु ऐ
1: नून डॉक्टर ते वेदानी को तेनु आन में के शाफी के दुआ को इस बाले भी कुछ जनु ते रिपोर्ट वालों ने करने के
0: शाहिदा रोमन रोमन डॉक्टर के आतु के ही फी नमिस रूमी ने हिला पोते फदैग इन्हें के लोगों कारों ने विस्ना थे इन्हें के ही पनी करने वेफा रूमी देखे मुंदिये हुरिया हुआ फिर तके एकुका बिना कुरा मुंदिया मुस्तकबल फले सिकुन ते के तेरे का बीमा हम फिकें दिए ही दुनिये हुट्टी उम्मीद के हुरिया दोर तके बंद भी फदे हो सासे रूमी या कुरे मुंदिया

0: Det är FM. Nu är det här 1 MHz.
1: Balalan Sali Mrs. Lage mihaftaage showga Balalan Sali film ka furtamal gun mi himnal deni Hindi film ge maulumat dehas 22 wana haru Netflix unda kamfeshi Darling Saki India ge Hindi black comedy film e mi Jasmeet K Reen ge furtam feature film direction mi film produce ko fawani mashhoor batala Alia Bhatt ke Amila production house kamawa Eternal Sunshine production sa Shahrukh Khan ge Red Chillies entertainment kuligen film ge magand role tang ada ko fawani Alia Bhatt Shefali Shah Vijay Verma adi Roshan Mithiu
2: mera naam hai Hamza Sheikh main Badrunisa Sheikh ka shohar hu main apni biwi se behad mohabbat karta hu lekin मैं उसे छोड़ के जा रहा हूं।
3: Hey darlings, you mad you, I love you, please.
4: बाप रे बाप।
5: रमन काका, हमजा नहीं आए?
4: नहीं।
5: साहब, मिसिंग कंप्लेंट फाइल करनी है।
6: कौन मिसिंग है?
5: मेरे हस्बैंड हमजा।
6: कभी से गायब हो?
5: परसों।
6: कल से या परसों से?
5: कल और परसों के बीच में से साहब।
7: ना दो दिन पहले काम पे गया।
2: कभी कभार ठीक है सर, लेकिन ये रोज तो मत करवाओ। टीसी है।
7: लेकिन वापस ही नहीं आया।
8: काम पर गया, घर पे वापस नहीं आया।
6: क्या बोलते दादू?
9: केस क्लोज है सर, कंफर्म।
5: हमसा, मैं समझाती।
2: मेरी
5: बात तो करो।
2: क्या कर रही हो ये सब?
10: ए बच्ची
2: हाथ खोल साली तो जान से जाएगी
10: किधर जा रहे ली अरे आगे कुआं पीछे खाई किस्मत ने वाट लगाई
5: दारू छुड़वाने की दवा बोली थी ना
7: चूहे मारने की दवा खाने में डाल दे जिंदगी पर दारू नहीं पिए
10: करूं हलाल बिछा के जाल बचेगा कैसे मेरे लाल
5: मेरे को हमसा को मारने का नहीं है इनके साथ वही करूंगी डिट्टो जो ये मेरे साथ की फील्डिंग बहुत हो गई अम्मी अब बैटिंग चालू
2: कब तक छुपा पाएंगे हमजा को पकड़े जाएंगे
5: सर
8: हमजा के डैडी ऑफ हो गए
5: अल्लाह मियां उन्हें जन्नत अता फरमाए

0: जुल्फी, अगर तूने हमजा को किडनैप किया है ना, तो सांप को सच बता दे।
1: बाप रे खालम, मैंने क्या? आप दोनों
2: जुल्फी।
3: मिफिम के वाहक बिनाय फवानी मुंबई के मेदुफंती के मुस्लिम आइला के मच्चा आलिया अदाकुरा कैरेक्टर बद्रुन निसाय की एना के फिरिमी हा हमसा देके नुहानु लोभी वांग हेने नविस हमसाय की बद्रुन निसाय बोडति अनियात के कुरा नफसानी गोतुन्ना जिस्मानी गोतुन एना अलवति कोफवा मीहे बद्रुन निसा बदु सुमित कुरनी हमसा रंगळु वाने कमा एकमकु हिद्दति हादिसाय के सबुं बद्रुन निसागे मि उम्मीदु फुंडु फुंडुवे एना के केत्तेरिकन कुलुनला हिसाब दे मिहिसाबं बदल निसा एना के मम्मा शम्सुआ गुलिगें हमसायं एना कुरी अनिया के बदल हिफुमन निम्मा मे बदल हिफुम गे तेरे हिंगा मजा अदि नूतनवस हादिसा तय की फिल्म गे एम्मे शौक वेरी पे
4: क्या कर रही हो ये सब हाँ खोलो मेरे को
5: फ्रॉक्स कैसे लगी डार्लिंग्स
4: ये नंगा पद बंद करो और हाथ खोलो मेरे
5: और पोनी
4: पागल हो गई हो क्या शोहर हूं मैं तुम्हारा
5: आपको पोनी पसंद नहीं है ना इसलिए बांधा है रमन काका मिले से कह रहे थे कि बिल्डर ने कहा अगर अखे सोसाइटी मेंबर नहीं माने तो बिल्डिंग का रीडेवलपमेंट नहीं होएगा मैंने कहा कैसे नहीं होएगा हमजा तो मान गए साइन करो
4: हाथ खोल ली तो जान से जाएगी
5: साइन करो
4: सुन नहीं रही तो हाथ खोल
3: डायरेक्टर जस्मीत वणी गेवेशियानिया फॉर द सीरियस मौदुए ब्लैक कॉमेडी के गुतुगा वर फुरी हमिया गिनेस दीफा फिल्म का अनियावरी कंदा कुआ देरवस बेलुन तेरिंग हिनियन न फदा जोक तका हादिसात हिमना फणी मौदु के सीरियस कं अनुगेले फदा गुतका फिल्म के म्यूजिक तैयार को फवनी विशाल भरद्वाज लवतो के तेरे लाइलाज की गिनबे के मकबूल कं होदी असर गदलावे गुलजार गेलिं वेरिकमुं फिल्म के असर इतुरा वरगद कोते

0: ހަމ އެއާކު ބަދުރު ނިސާގެ މަންމަ ޝަމްސޫގެ ރޯލުން ފެންނަ ޝިފާލީ ޝާހުގެ އެކްޓިންނަކީ މުޅި ފިލްމް ކޮޅެއް ޖައްސައިދިން އެންމެ ވަރުގަދަ އެއްތަނބު އޭނާގެ މޫނުމަތީގެ ކުލަވަރުތަކާ ސީރިއަސް ދަނިވަޅުތަކުގެ ވެސް މަޖާރޫހެއްގެ ގެންގުޅޭ ހަރަކާތަކީ ބެލުންތެރިން ފޫހިވިޔަ ނުދީ ހިފަހައްޓައިދޭ ކަންކަން ދަރިފުޅަށްޓަކާ މަންމައެއްގެ ހިތުގެ ޮންނަ ލޯއިއްބާ ރައްކާތިރިކަން ދިނުމަށް ކުރާ ހިއްވަރު ޝިފާލީ ވަނީ ވަރަށް މޮޅަ ތަޞައްވުރު ކޮށްދީފަ
1: लवबर्ड जुल्फी मेरे भाई जैसा है
2: अच्छा ये
1: हाँ
2: तू भाई बन गया
1: सब
2: हाँ
1: आप समझ नहीं रहे
2: क्या
1: ये एक तरफा प्यार है जुल्फी अगर तूने हमजा को किडनैप किया है ना तो सांप को सच बता दे
2: बाप रे खाला मैंने क्या आप दोनों
3: जुल्फी मैं सैड हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा चांस है ओके
2: ए हीरो इधर मैं कुछ तेरे को क्या लगा इसके पति को सल्टा देके ट्रक लाइन क्लियर हो जाएगा
4: नहीं नहीं नहीं नहीं जाओ
2: यार आप गलत समझ रहे हो ना मैं ऐसा कुछ भी नहीं
4: क्या है बताना समझाना
2: हां ठीक है मेरे को प्यार है मेरे को प्यार लेकिन मेरे को बदरू से प्यार नहीं है मेरे को तो खाला क्यूट लगती है
0: मेरे तरुण हमजा के रोल में फिर ना विजय वर्मा के हुनर की फाहा कोलंजे वारुगदा मसिकते ಏನಾ ದಕ್ಕುವಾದಿನ್ ಅಣಿಯಾವಿರಿ ಕಮ ಮಕರುವರಿ ಸಿಫತಹುಗೆ ಸಾಬುನ್ ಬೆಲುಂತಿರಿಂಗೆ ಹಿತುಗ ಏನಾಯಂ ಇಂತಿಹಾ ನಫ್ರ ತುಫದೇಹ ಮೊಳ ಎ ರೋಲ್ ಕುಳೆಫವೆ ಅಣಿಯಾವಿರಿ ಫಿರಿಯಗ್ಗೆ ಹಗೀಗಿ ಸೂರ ಏನಾಗೆ ಎಕ್ಟಿನ್ನು ಫೆಣಿಗೆಂದಿಯೇರು ಈ ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಕಂ ಇತುರು ಕೊದ್ದಿನ್ ಮುಹಿಂ ಮುಬಾಯೆ ಮಿತಿನ್ ಥರಿಂಗೆ ಮಸೆಕ್ಕತುಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಅವ್ವಣಿ ಸಿನಿಮೆಟಿಕ್ ಫುರಿಹಮಕಮೆ ಲಿಬಿಗೆ ಗೊಸ್ಸ

0: okay?
1: No, I went down like an old lady. I really hurt my knee.
2: Come on up and get it off, no? Come on.
0: Anyone we can sue?
1: There was this nice guy that helped me, though.
0: Is he good looking?
2: Before you go, take a book, souvenir.
1: Be happy for this moment.
0: This moment is your life.
3: দেহাস দেবনাহারো রিলিজ করি আনফেথফুল লাকি এড্রিয়ান লাইন ডাইরেক্ট করি ফিল্মে ফিল্ম ফেনিগিন দেনি ডায়ান লেন রিচার্ড গিয়া আদি অলিভিয়ে মার্টিনেজ 50 মিলিয়ন ডলার গে বাজেট কো ফেদি মি ফিল্ম বক্স অফিস হুগা সাতেক নাওয়ার পয়েন্ট 1 মিলিয়ন ডলার লিপুনো মি ফিল্ম ডায়ান লেন দেখকে মোল একটিন অস্কার আদি গোল্ডেন গ্লোব নমিনেশন লিপুনো
1: I just wanted to call you and thank you and I wanted to send you a bottle of
2: Come and see me I'll make you some coffee
1: Here I am again.
2: Want to dance?
1: How?
2: Your eyes are amazing, you know that? You should never shut them.
3: Hindi film Murder release vedi hasatu varnaharu. Mahesh Bhatt produce ko Anurag Basu direct kuri me film ge thari naki Malika Sharawat, Imran Hashmi adi Ashmit Patel. MF first crore rupees ge budget ko ufedi me filma fan service crore libi bodu kamyabi hodi.
4: Sonia? You mean
5: हाँ मेरी बड़ी बहन मेरे पति की पहली बीवी
4: याने अपनी बहन के पति से तुम्हारी शादी I don't understand
5: कभी कभी जो होना होता है ना सनी वो हो जाता है चाहे कोई कुछ भी कर ले
4: मतलब
5: काश उस दिन मेरा जन्मदिन नहीं होता काश उस दिन पापा ने स्टोर की ओपनिंग नहीं रखी होती काश उस दिन मैंने जबरदस्ती अपना टिकट दीदी को ना दिया होता कि वो बैंगलोर जाए
3: दे फिल्म का विस्फेनणी मेदुफंतिया के हमजे है आई लागे तेरेगा अंगे मिहाय इहसास करेवे खणे वे कमे मी दे फिल्म के एम में बड़ो तफात की फिल्म के नेमु अनफेथफुल निमेनी वकी गोते नेंगी नूतनवस कमे के तेरेगा ನಮ್ಮ ವಿಸ್ ಮರ್ಡರ್ ನಿಮಣಿ ಫಿರಿಮಿಹಾ ಅಮಿಲ್ಯ ಫುಲ್ಹುಣ್ಣ ಹವಾಲ್ವೆ ಅಂಗೆ ಮೀಹಾಯ ಮಾಫಂಗೆದಿ ಕ್ಯಾವಿನಿಗೆ ಗುಳುಂ ಅಲುಂ ಬದಹಿವಾ ಮೋರಲ್ ನಿಮ್ಮಕುಂ

ओ जाने जा, ये सच है कि मैं अपनी मोहब्बत का इजहार कभी खुलकर न कर सका, मगर मेरी आंखें हमेशा मेरे दिल की हालत बताती रही। और तू है कि मुझसे बेखबर आज भी है, मेरे दिल की हर धड़कन